मरण लिखाए मंडल में आए सबना मरना आया विछोड़ा सबना हर जो जन्मे है हर जो बने है हर जो उपजे है उस हर एक ने मरना ता है जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए बाकी ये गल वखरी है ओ मौत जो आम लोकां वास्ते जिवें कबीर जी दा बचन सी जिहे मरणे सब जगत तरासिया जिस मौत ने लोकां दी मरण तो पहला ही जान कढ़ी मौत तां पता नहीं कदों आउणी मौत दे डर ने ही बंदे नूं मार रखे जीण नहीं पई देंदी जिहे मरणे सब जगत तरासिया सारा जगत तरा तरा कर रहा है जिस मौत जिहदा नां लैणा चंगा ही समझा जांदा चार बंदे बैठे होण कोई बंदा विच मौत दीआं गल्लां करन लग पवे कहिंदे ने कोई चंगी जी गल कर मौत दी गल माड़ी गल है मंदी गल है चंगी नहीं लगदी जीण दी गल कर मौत दी गल ना कर जिस नूं भाई मूले ने भाई मरदाने दे उस दो पैसिआं दे बदले मरना सच ते जीणा झूठ ले के दित्ता सी जिस नूं गुरु नानक ने प्रवान कीता सी मरदानिआं कोई तां समझ वाला बैठा है इत्थे सियालकोट विच जिहड़ा मरण नूं सच समझदा है और है भी सच जिंदगी दे बारे कई तरह दे शुभे हो सकदे ने शक हो सकदे ने शंके रह सकदे ने गर्भ विच है जो इसका जन्म होवेगा जिंदगी इस नूं प्राप्त होवेगी कोई पक्की गल नहीं है शंके वाली गल है जिसका जन्म हो गया है इस नूं कुछ उमरां प्राप्त हो सकेगी शंके वाली गल है ये बोल सकेगा ये तुर सकेगा शंके वाली गल है डर बनिया रहिंदा है पता नहीं चल सके ना चल सके सारी क्रिया शरीर दी ठीक चले ना चले कल नूं पढ़ सकेगा के नहीं परिवार वाला बन सकेगा के नहीं कारोबार चल सकेगा के नहीं हर किस्म दे शंके हो सकणगे लेकिन एक गल परपक है हर एक जीव दे संबंध विच ये जिहड़ा जन्मे है मरेगा जरूर मौत ना टल सकेगी हर जीव ते आवेगी पर इस दे बावजूद भाई मूला तां कहिंदा सच है जो हर हालत च वापरना ही ये सच है ते जो नहीं रहना कल नूं जीवन ओह झूठ है फिर भी मनुख चाहुंदा है सच दी गल ना करो झूठ दी करो मरण दी गल ना करो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े लै जाए जियो मता किते जम आवे ते फड़ के लै जाए बंदा हमेशा हजार जतन करदा है मौत तों बच सकण दे ना कोई बचिया है ना किसे बच सकदा जो सच है जो वापरना है इस तों बंदा डरदा कहिंदा दी गल ना करो जे मरणे सब जगत तरासिया कबीर जी कहिंदे ने मैनूं तां समझ ही आ गई है मरण विच भी एक आनंद है कबीर जिस मरणे ते जग डरे मेरा मन आनंद मरणे ही ते पाई है पूर्ण परमानंद भावें मौत भी तीन तरह की कहिंदे ने शास्त्रकार कहिंदे ने एक तां मरना ओह हुंदा है जदों मनुख दा आत्मक जीवन शुरू ही ना हो आत्मक मौत बंदा मर जावे मरिया ही होवे एक तां ओह मौत है मैं कमाउंदा मर गया मैं इत्थे उड़ीकदा मर गया मरिया ही होया बंदा जीवन शुरू ही नहीं होया क्योंकि जीण दा चज नहीं आया एक ओह मौत हुंदी है जिहड़ी शरीर करके हो जांदी लेकिन एक मौत होर भी है ओह है मनुख दी हौं दी मौत मैं मेरी दी मौत जदों धर्म दे घर जन्म हुंदा है इस पासे दी मौत हो जांदी हौं दी मौत हो जांदी ते बंदा इस मौत तों भी डरदा जिस नूं इह मरना आ गया ना उहनूं धर्म दे मार्ग ते जीणा आ गया जिहनूं धर्म दे मार्ग ते जीणा आ गया उह शरीर दी मौत बड़ी छोटी समझदा है बड़ी तुच्छ समझदा है जिन्हां नूं चज नाल जीणा आ गया है सच्ची गल तां इह है कि चज नाल मरना भी उहनां नूं आया कबीर जी कहिंदे ने सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया गुरु के शब्द द्वारा मैनूं मरण दा पता लग गया अब कैसे मरो मरण मन मानिया मरण ते चित करदा है हौं करके मरण नूं चित करदा है उंज भी जे मौत आवे जी आया मोए मरने का चाव है मरो ता हर के द्वार उधर जीवन शुरू हो जावे मर मर जाते जिन राम ना जानिया मरदे ता ओ ने मरदे ही रहिंदे ने ओ जिउंदे भी मरदे ही रहिंदे ने जिन्हां नूं रब दा पता नहीं राम दा पता नहीं ईश्वर दा पता नहीं धर्म दा पता नहीं
मरनो मरन कहे सब कोई। हालांकि मरण दियां गल्लां बड़ियां हुंदियां ने, मरण दे संबंध च खोजां भी बड़ियां हुंदियां ने, मौत नूं टालण दे जतन भी बड़े हुंदे ने। मौत दी गल तां बड़ी है पर मरना वेखो जिसका इन्ना चर्चा है, जिहड़ी इन्नी सत चीज है, जिहड़ी हर हाल च वापरन वाली चीज है, मनुख इहदे बारे बड़ा ही अवेसला है, उहदे वास्ते कोई तैयारी नहीं।

जाको ठाकुर ऊंचा होई सोजन पर घर जात ना सोई। सो साहिब रया भरपूर सदा संग नाही प्रभु दूर। कवला चरण शरण है जाके कह जन का नाही घर ताके। सब कोई कहे जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता। कैसे

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में तिल बिक सब करे बिनासा।

0: सिकंदर।
1: को हर समान नहीं राजा, ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। तेरो जन होए सोए कत डोले, तीन भवन पर छा जा, हाथ पस

नार मुनि ने चरना पे ठहर के किस प्यार वाले मन ने अरदास की थी। नारद जी तुष तन जो मेरे भगवान के दर्शनों जा रहे हो, नारद तुसी तन जिन्हां नूं मेरे भगवान के दर्शन मिलणगे, नारद ने तकिया प्यार वाला मन, ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां विचों अथरू कह रहे है। नारद ने कहा क्यों रोंदा है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहता है। इस दियां कुर्बान निकली हैं ते प्यार नाल इसने पढ़िया, नारद मेरी तो एको मंग है केड़ी।

सुनवे द तारक दास है। आज जंगल बियाबान समाधि लगा के बैठा है। कौन? मिठ बोला गुरु। कदे भी कौड़ा नहीं बोलता। हर समय मिठाई बोलते। दुनिया का उद्धार करता एडा दयालु गुरु है। जे गलतफहमी विच आके कोई इस नूं वट्टे मारदा है, ए गुरु ओदे नाल भी प्यार करता है। कौन है ओ जिहा मिठा गुरु? प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक। आओ इस परोपकारी गुरु का नाम एक बार सारे जपो, कोई रसना भी खाली ना रह जाए। सारिया नूं दातां देण वाला हिंदू मुसलमान सारी सृष्टि के बंदिया नाल प्यार करन वाला मेरा गुरु नानक। आओ तुसी अदब सत्कार विच आओ, जिस तरह जुड़े हो गुरु नानक दे प्यार विच, नेत्रां द्वारा दर्शन मन जुड़िया है। आओ रसना भी पवित्र करो, प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक। अजे भी सारे ने नहीं किया। गुरु नानक दा नाम लाभदायक है। ख्याल आएगा भी कितना लाभ है गुरु नानक दा नाम जपण दे नाल, क्योंकि आपां सारे विहारी हां ना। कोई काम करिए ओदा लाभ पहला सोच ले, चाहे दफ्तर जान वाला है, चाहे दुकान ते बहन वाला है, कोई भी किता करन वाला है। अपनी ड्यूटी देंदिया सोचता भी इतनी मैनू आमदनी हो रही है या इतनी मैनू तनखा मिल रही है। कई ख्याल आएगा कि भाई गुरु नानक का नाम जपिया मिलता की? आ जाता है ना मन च हो, मन के ही करदा करदा रहा। कदे गुरमुख बन जाता है, कदे मनमुख बन जाता है, कदे दानी बन जाता है, कदे मंगता बन जाता है, कदे पुन्नी बन जाता है, कदे पापी बन जाता है, कदे नीवा हो जाता है, कदे उच्चा चढ़ जाता है टीसी दे, कदे बुरा हो जाता है, कदे भला। यह मन का स्वभाव है। तो फुरना बन जाता है ना। तो आओ पहला पूछिए किसी महापुरुष नूं, जी तुसी रब दे प्यारे हो, गुरु नानक दे प्यारे हो, दसो जे गुरु नानक गुरु नानक जपांगे तां की मिलेगा? ओ लिखिया है महापुरुषां ने, नाम लिए सतगुरु नानक के, नाम लिए सतगुरु नानक के, दुख दर्द रोग मिटे सो भयानक। नाम लिए सतगुरु नानक के, सुख संपत भोग मिले सो अचानक। नाम लिए सतगुरु नानक के, जग काग चुगे मिल मोती मानक। सारी संगत मिलके आखो धन धन गुरु बाबा। ए तां किसे गुरु दे प्यारे दी दली। पर आओ गुरु तो पुछी, गुरु तो किस तरह पुछांगे? बाणी द्वारा, बाणी द्वारा गुरु नानक बोलदा है। बाबा जी वड्डे बाबा जी बचन करदे, संतो पावना बना, गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते तू पावना बना गुरु नानक वाली। रोज कहिंदा जागदी जोत, जे जागदी जोत जान के तू पूजा करेगा। ए बाबा जी दी पवित्र पावन रसना तू बचन सुने है। बाबा जी कहिंदे सन रुमाल चुकण दी कोई लोड़ नहीं, आपे हुक्म मिलेगा कुछ दी। ये तन्ने दा पत्थर बोलदा है साडा हाजर नाजर, जागदी जोत पर गुरु गुरां की दे, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बोलदा। बोल बाणी सदा बोल रही है, गुरु बोलता। तीन अखर लिखे होंगे चौरस तेज स्टाफ, तेज गड्डी आ रही है, जिन्हें स्टाफ कर लिया एक्सीडेंट तो बच गया। स्टाफ बोल रहे हैं तीन अखर, दवाइया पै दें दे। बोलते हैं ना, किस तरह उठ जाके ब्रेक लगा देने हैं। कोई होर तो नहीं बोले, किसी ने होरने तो इशारा नहीं किया, अपने आप ही ब्रेक लग जाती। फिर प्यारी सात संगत, वो तो तीन अखर हैं जिन्होंने स्टाफ के उत्ते अमल किया एक्सीडेंट तो बच गए, जिन्होंने अनगहली की मोटर मुद्दी फौरन हो जाती। पर तीन अखर मैं बोलते हैं इधर तो प्यारी सात संगत, च
1430 صفحہ پہ بول رہا ہے، ایک ایک اکھر پہ بول رہا ہے. پھر سن کے جی نہ منیے تو اے ساری کمزوری ہے. گرو تو سدا ہی بولتا ہے، ٹھاکر ہمارا سد بولتا سدا بولتا ہے، سدا بولتا ہے بھائی. بابا جی بخش کر دیتا. تو آؤ گرو تو پوچھئے سکھ دا جو ترا ہے جیون دا ترا کہیں ایکسل جڑا بچ ہوندا ہے گڈی دے، جی وہ ٹوٹ جائے تو بس تماشا ہی ختم ہے، چاہے کتنی چنگی گڈی کیوں نہ ہو. تو اسی طرح سکھ دا جیون جڑا ترا ہے وہ قربانی، قربانی دا فیصلہ سکھ واسطے رب دا فیصلہ ہے. تو آؤ گربانی تو پوچھئے. گربانی دوارا ستگرو جی فرما نا، تاریا جہاں

जिन्नी तुदनू तन के तेन जम ने कितनी बख्शिश होती किना उते जिन्हों ने गुरु नू तन के आओ धन गुरु नानक दियां बख्शां प्राप्त करने वाली सर्वत्माई पाई प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, असीं अपने रोजाना दे रहरास दे पाठ दे विच इस शब्द ते पढ़ते हैं, पर जो इस दे विच विचार पेश किया गया है उस ते असीं कदे रुकते नहीं हैं। इस करके असीं ना रुकन करके जो इस पंक्ति दे विच साडी एक दर्दनाक हालत का जिक्र किया गया है उसनू असीं अवॉयड कर जाने। आप जानते हो कि अगर कोई चीज गल जाए तो उस दे विच नंबर एक ते कीड़े मकौड़े पैदा हो जाते हैं, वो बीमारियां का घर बन जाती है, और दूसरा उस दे विचों दुर्गंधी आती है, उस दे नजदीक होना भी मुश्किल हो जाता है गली हुई चीज के। और गलियां हुई चीजां नूं असीं बाहर फेंक देने, बाहर सुट देने, और असीं कभी ये सोचा है अपने मुतलक कि असीं भी गल गए हैं? ऐसा असीं नहीं सोचा। अगर असीं ऐसा सोचिए कि असीं अगर साडे शरीर का कोई अंग गल जाए तो असीं डॉक्टर दे पास जाने, उस उत्ते मरहम पट्टी कराने, उसनू टक के रखते हैं, क्योंकि गलिया होया अंग खुद नू भी देखने अच्छा नहीं लगता, दूसरों नू भी देखने अच्छा नहीं लगता, उसनू साफ रखते हैं कि उसके कीड़े मकौड़े न पै जाए। और गलिया होया अंग जदों कभी बिल्कुल ना ठीक हो सके फिर उसनू कट देना पैंदा, खत्म हो जाता, क्योंकि वो गलिया होया अंग एक पूरे दे पूरे शरीर में भी गाल सकता है, खत्म कर सकता है। तो महाराज जी ने फिर लफ्ज जो वर्त्या है उस तो ये सिद्ध हुंदा है, गुरु साहब साडे जीवन दे प्रति आख रहे हैं, इस काया दे प्रति आख रहे हैं, इस शरीर के प्रति आख रहे हैं कि जो तमाम गुण सत नुक्ते जो खूबसूरतियां जो महिमा जो ब्यूटी इस काया दी आप जी ने पिछले कीर्तना च सुनी है सत नुक्ते कि ये दुर्लभ है, ये रब दा मंदिर है, ये रब दी कामणी है, ये अकाल पुरख वाहिगुरु तक पहुंचण दे वास्ते एक घोड़ी है, तमाम सारियां जूना दे विचों ये श्रेष्ठ है, उत्तम है। और आखिर च महाराज जी ने इसनूं बहुत ही उच्चा दर्जा दिंदिया होया ये आख्या कि ये एक सरोवर है, सरोवर, और सरोवर दे विच इशनान कीतियां सब बीमारियां हट जाया कर दियां, सरोवर दे विच कमल फुल हुंदे हैं, खिले हुंदे हैं, शीतलताई हुंदी। गुरु बाबा जी आखदे हन अकाल पुरख वाहिगुरु
ओ परम ज्योत परम आत्मा जो साड़ी सोल है उस दे नालों दूर जान करके उस दे नालों विथ पैन करके उस दा ध्यान साडे ध्यान चो निकल जान करके उस दे नालों टुटन करके उसनू भुलन करके कहिंदे की होया है इस काया दे सारे ही जितने गुण सन ओ गल गए सारे गुण गल गए हुण असीं गले हुए लोग सारी कम्युनिटी गले हुए लोग सारी ह्यूमन सोसाइटी गली पई और दसो इसका सर्वाइवल कित्थे होएगा किस तरह होएगा ये शब्द सिर्फ कोई अहमियत पढ़ देने वास्ते ही थोड़ो हन नितनेम कर लिया तो फर्ज पूरा हो गया इसनों तो बहुत ध्यान दे नाल दिखना है महाराज जी तो बहुत ही खास बहुत ही जरूरी गल कर रहे हैं जिस तरह किसी नु कैंसर होया होवे अगर उसनों कोई दस दे कि तेनु कैंसर होया है लिख के दे दे कि तेनु कैंसर होया है तो उसनों रोज पढ़ी जावे रोजाना उसका पाठ कर लवे उस लिखे हुए पर्चे का कि मैनु कैंसर होया कैंसर होया कैंसर होया ऐसा कभी हो सकता एक दफा पता लगन की गल शक पैण की भी देर है कि इंसान फौरन जाके टेस्ट करवाएगा और फिर उसको रिमूव करवाएगा सर्जरी कराएगा पर गुरु बाबा जी कहते हैं इतना भयानक कैंसर के पूरे दे पूरे गल गए हो अंदरों और असि फिर उसको रोज पढ़ देने हैं और बहुत कंफर्टेबली रही जाने जैसा कि सानू अपने गल जान की कोई तकलीफ ही नहीं होंगी असी गले पे हां ना असी अपने आप में दुर्लभ समझते हां ना असी मंदिर बन सके ना असी सरोवर बन सके ना असी तमाम सृष्टि दे विच्चों उत्तम ही बन सके सगों इस तमाम रचना नू खराब करन दे विच साड़ी कंट्रीब्यूशन है इस प्लैनेट नू डैमेज करन दे विच साड़ी कंट्रीब्यूशन है इनवायरमेंट नू डैमेज करन दे विच साड़ी कंट्रीब्यूशन है तो असी उत्तम नहीं बने पशु पंछी परिंदे कीड़े मकौड़े दे आर नॉट डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट ओनली ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स दे आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली डेंजरस टू द होल एनवायरमेंट तो उत्तम असी किवें हो महाराज जी ने यह आख्या इंसान तेरे नालों सूर चंगा है कबीर जी ने आख्या साकत ते सूकर भला साकत इंसान नालों सूकर जो है वो अच्छा है चंगा है राखे अच्छा गांव क्योंकि गांव नूं साफ सुथरा रखता है गांव की सफाई करती है साकत ते सूकर भला राखे अच्छा गांव पशु नूं चंगा आख्या है पशु मिले चंगियाईयां खड़ खावे अमृत दे कहते पशु चंगा है घा खांदा है खड़ खांदा है और अमृत वर्गा दुध दिंदा है नाम विहूने आदमी रिग जीवन कर्म करे तो गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द जो किसी रोज ही पढ़ते हैं पर इस दे विच्चों अपनी गली सड़ी तस्वीर नू असी नहीं देखते दे, पढ़ के अगान लंघ जाने हैं गुरु बाबा जी ने इस शब्द च यह आख्या है कि ह्यूमन फॉर्म के जितने भी गुण सन जिस तरह गुलाब का गुण की है कि उस दे विचों सुगंधी आती है उस दे विचों कोमलता नजर आती है
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗੀਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਅਗਰ ਗਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ

जितने भी इसके छिद्र हन, छेक हन, होल्स हन शरीर दे, उना दे विच्चों अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है। कन चो, अखियां चो, नासकां चो, मुंह चो की निकलता है, अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध इसने सिर्फ अपने अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरु नु प्रगट करके ही होना, उस तो बिना यह शुद्ध नहीं है। सुची काया हर गुण गाया, हरी दे गुण गाउन नाल ही यह काया सुची हो सकती है, वरना यह सुची नहीं हो सकती। कहते नापाक है, किथे मंदिर, किथे इसनु मंदिर वर्गी बना देना सी, ते किथे इसनु नापाक आख्या है, अपवित्र है। तीसरा नुक्ता, गुरु साहब आखते हैं यह डरौनी है, यह काया कहते

अगर इसनु मंदिर नहीं बनाया तो जदों इस दे विच्चों रूह निकल जाएगी कहिंदे यही दुर्लभ डरौनी लगेगी, इसके नजदीक खड़ना मुश्किल हो जाएगा, खड़दियां डर लगेगा, यह डरौनी बन जाएगी। फिर आखदे हैं

अगर इस काया दे अंदर ए पोटेंशियल है कि ए काया नू बनाउन वाले नू ए बुझ सकती है, रियलाइज कर सकती है, उस दे विच इमर्ज कर सकती है, उसनू समझ सकती है, तो कहंदे अगर उसनू नहीं ए समझदी ते ए पशु तो प्रेत तो मुक्त तो भी बुरी है, प्रेत तो भी बुरी है, पशु तो भी बुरी है। चौथा नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन एक काया कमली है, मूर्ख है। कहंदे हन

0: फिर आखते हम ये मूर्ख है,
1: आसा बंदी मूर्ख दे
0: आशा बंदी आशामा बनी फिरती है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है। इस मूर्ख ने यह भी नहीं पता कि हो सकता कल दा दिन तेरा अखीरला दिन होवे, कल दी रात तेरी आखिरी रात होवे, अखीरला श्वास तेरा नेक्स्ट ही होवे, हो सकता आ साल तेरा अखीरला साल होवे। पर ए आशामा बंदी है बड़िया लंबियां लंबियां, कई बंदे कितनी उन्हां दी उम्र हो जाएगी फिर भी आखणगे हाले असी जदों सैटल हो गए तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सैटल पता नहीं कदों होणगे, सो कई लोग सारी उम्र सैटल ही नहीं होंगे, देन दे फाइनली सैटल इन द ग्रेव, फिर वो सैटल हो जाए। गुरु महाराज जी आखदे ने ए मूर्ख क्योंकि इसने अपनियां गलत आदतां बना लईयां हन, एडिक्शंस बना लईयां हन, सुभाव बना लए हन, अते उन्हां चीजां नूं वरतदी है जिहड़ियां चीजां इस नूं कमजोर कर दियां हन। तो कहिंदे ए मूर्ख भी है,

अगली गल पंजवन गुरु बाबा जी आखते हैं, अगर एक आया मंदिर ना बनी सरोवर ना बनी तो यह फिर दुखां दा घर है, या तो यह रब दा घर है नहीं तो फिर यह दुखां दा घर है, क्योंकि इस दे विच इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं, जो जो कमजोरी आंदी है बुढ़ेपा आंदा है, इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं कि इंसान फिर उन्हां दियां दर्दां दे नाल घुलदा घुलदा इस दुनिया दे विचों जांदा है। सब तो ज्यादा पेन जो है इंसान में फिर एक काया दी सर्जरी हुंदियां हैं, की कुछ हुंदा है। कहंदे हन इह शरीर ही फिर साडा एनिमी बनता है। बड़ी कमाल की गल महाराज ने बाण च लिखी है कि यह शरीर ही अगर नाम नहीं जपया फिर साडा एनिमी बनता है, साडा विरोधी बनता है। बाणी च आखते हैं इस तरह कहते हैं।

जे तेरा शरीर के तेते लगे दुख उतने ही ज्यादा दुख लगे, उतने ही ज्यादा मुश्किल दे विच पै। तो पंजवा नुक्ता यह है कि अगर यह सरोवर ना बनया, अगर इसनु असी दुर्लभ ना बनाया, अगर इसनु रब दी सजाई हुई दुल्हन ना बनाया, तो इसने तुहानु दुखी भी बहुत करना है, बहुत दुखी करना है। और उस दुख दे विच कोई साथ नहीं दे सकता, उसनु कोई शेयर नहीं कर सकता, वो दुख तुहानु खुद अपने आप चलना पैना। ये दुख दा घर है। अगला नुक्ता छेवां, गुरु महाराज जी इत्थे छेवें नुक्ते दे विच बहुत ही चोट वाली गल करदे हन। कहिंदे हन ए वेस्ट गया है, निष्फल गया है, व्यर्थ गया है। अते आखदे हन पंक्ति

सगल शरीर आवत संतान, बाकी सारे ही शरीर जड़े हैं वो मरण तो बाद काम आते हैं। किसी की स्किन काम आती है, किसी दी बोन्स काम आदि हैं, कईयां दी दवाइयां बनदियां हैं, कईयां दी स्किन साडे उत्ते पहनन दे योग हुंदी है, असीं पहन लैंदे हां। लेकिन इंसान दी स्किन उतार के पहन के देखो, मरे हुए इंसान दी स्किन नू उतार के पहन के देखो, पहनी जा सकती है? कहिंदे सगल शरीर आवत सब काम, सारे शरीर किसे ना किसे काम आ जांदे हन मरण तो बाद। ईवन सप वर्गा जहरीला जानवर भी, उसकी स्किन भी काम आती। लेकिन इंसान का शरीर ऐसा है जरा किसे काम नहीं आता। निफल मानुख, ये मानुख का शरीर जरा बिल्कुल निष्फल जाता है। बस एक ही काम इसने करना सी, नाम जपन का। अगर वह नहीं किया तो कहने निफल मानुख जपे नहीं नाम, ये बिल्कुल निष्फल हो गया। तो इसके सारे गुण जो हैं वो गल गए। एक दफा इस पंक्ति में सुनो अते नाले अपने अपने अंदर इसनों रिफ्लैक्ट करो अते सोचो कि ये सच है, ये सही है, कि मैं इसके नाल सहमत हाँ, कि मेरी जिंदगी ही ते नहीं अजही, कि मेरी ही जिंदगी अजही ते नहीं। ऐ जो शब्द वर्त्या है, त्रिक त्रिक खाया, त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिक शरीर कुटुंब सहत से, किते मेरा खाना पीना ही उसके त्रिकता नहीं है, त्रिकारता नहीं है, किते मैं अपनी इस मंदिर वर्गी काया नू ऐसे तो नहीं पहुंचा बैठा हां, तो फिर मैं किस तरह सिर उच्चा उठा के चलांगा, किस तरह अपने आप नू इंसान समझांगा, किस तरह मैं दूसरों के वल उंगली उठावा।

तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं। सुनो किमें गले हैं, कहते हैं

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता,

तुमरी कृपा ते तुर पछाणा तुमरी ओट तू है मेरा माणा तो बिंदु जा और न कोई तेरा खेल अखाड़ा जियो तुर बिंदु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना तो सब जी पास सब किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई

कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जन को प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान

come on up not hunting. अपनी कृपा करे चल कमल नानक आला दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत मरायन तन पाल साखी।

मैं दूजी नहीं ठहर जिस पे हम जाएंगे तो तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख पैना जो तू दे सोई सुख पैना।

0: अल्लाह यार योगी
1: खाहश है तुम्हें तेज चलाते हुए देखें।
0: ये दिहाड़ा थोड़े दिन हो लंघे वडे साहब जाने

आकार के आकार नाना प्रकार, श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं। जोग भोग नहीं वेद जगत भगत जाहे, असन बसन गुर सिखन लिभाए हैं। निगम शिखादिक कथिक नेत नेत कर,

भली राज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले कहूं फूल होए के भली राज पूले कहूं भवर होए के भली पात कहूं अश्व होए के

नरद विकरंत सेव है सदा सिस तित पस पिज पस पिप नसबा जद पी नरद पी करंत सेव हैसदा सिस तित पस पिपन बिज पसदा बेंत अगस आज से बटो बतस दीप सेखिया बेंत बेंत बेंत को

मान मैं तू मेरो खालसा से ही, खालसा मेरो स्वार्थ से ही। आ खालसा मेरो स्वार्थ से ही।

जेवा एक पार ना ले ही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी, एक छिन पर भी, इदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आके कहना। या मैं

गुरु कल की दरपाचा ने बख्शिश की थी, जेड़ा खाका गुरु नानक ने चितरिया, जिस खाके दे विच गुरु अंगद देव पातशाह ने भी रंग भरिया, गुरु अमरदास पातशाह ने भी सेवा का रंग भरिया, गुरु अर्जन देव पातशाह ने भी शहादत का रंग भरिया, नौ पातशाहियां ने इस खाके दे विच सेवा सिमरन प्यार भावना भर दिती। उस सिखी दे रूप नू गुरु कलगीधर पातशाह ने एक फ्रेम लगा के संपूर्ण कर दिता, सिख का रूप बनाया। प्यार सिखा तैनू गुरु कलगीधर पातशाह ने सुंदर दस्तार भी बख्शिश की थी, सिखी दी शान बख्शिश की थी, जिथे पंजे कक्के धारण बख्शिश किते, रहनी बहनी विच रहन दी प्रेरणा की, उथे तेनु साबत सूरत दस्तार सिरा दस्तार सजाउन वास्ते भी है गुरु के सिखा। जदो दस्तार सजावेगा, दस्तार सजा के जदो तू शीशे दे सामने खलोता होवेगा, ते मेरे दीदार होवणगे। कितनी बख्शिश की थी, पर अज दा सिख उस मालिक नू भी भुला बैठा, उहदे बचन भुला बैठा। इथों तक दस्तार दी जगह टोपी सिर ते पा बैठा, इथों तक कि उहदे बचन भुला के कन्न विच मुंदरा भी पाई फिरदा, ते फिर कहिंदा कि अज गुरु ने मेरी अरदास नहीं सुनी, गुरु ने मेरे कार्य रास नहीं कीते। ओ सिखा तू गुरु वाल पिठ कर लवे ते गुरु तेरिया झोलियां भर दे, तू मुख कर गुरु वाल, गुरु का बचन का मन। जदों तू गुरु का बचन मनेगा, गुरु तेरिया झोलियां भर देवेगा, तेरे कोलों कुछ लपो के ना रखेगा, तू गुरु दे बचन मन, गुरु दे पाए पूर्ण ते तुर दस्तार सजा। अफसोस अज का सिख भुलिया फिरदा, रब का राह छड़ के कुराए राह तुरिया होया। राव भाई अपने मन नू समझाइए।

उस गुरु की बख्शिश हासिल कर, रहनी बहनी विच रह, पंजा कक्कियां दा धारनी बन, सुंदर दस्तार सजा। जे सिख हो के टोपी पाउंदा ता फिर इत्थे बख्शिश, सिख होए सिर टोपी तरै, सात जन्म कुश्ती होए मरे, सात जन्म कोड़ी दा मिलदा जे सिख हो के भी टोपी पावे। सिख दा फर्ज अपने धर्म विच रहना, हिंदू है वो अपने धर्म विच रहे, गल विच जनेऊ पावे, मुसलमान है अपने धर्म विच रहे, पर सिख दा धर्म पंजा कक्कियां दा धर नहीं बन जाना। ते गुरु दी बख्शी सुंदर दस्तार नूं सजावे, सिखी स्वरूप पूर्ण धारण कर लवे। अज दा मुसलमान कहिंदा मैं सिख बन जावां, दास आ थोड़े दिन होए कुवैत दी धरती ते जदों गए, कुछ दिन कीर्तन कीता, एक मुसलमान जिहदे हिरदे विच भावना है, प्यार बड़ा, गुरु दे दर ते आउंदा, सेवा करदा, सिमरन करदा, कीर्तन सुनदा, निता परत नियम है। पर जो दास वापस आउन लगे ते उस दे नेत्रां विचों जल वहण लग पिया, हथ जोड़े भाई साहब जी आप जा रहे हो, मेरे वास्ते एक अरदास कर जाओ। मैं उस मुसलमान वीर वल तकिया, ख्याल आया अज का मनुख दुखी है, हो सकता है इसनू भी कोई दुख होवे, इस वास्ते चाहुंदा कि गुरु दे चरणां विच अरदास कर जावे। पुछिया भलिया की दुख है, किस वास्ते कहिंदे अरदास करो, हथ जोड़े भाई साहब मैनू कोई दुख नहीं है, मेरी एक इच्छा है कि मैं सिख सज जावां। भाई साहब आ तीन वार मैं केस रखे पर मैं सिख ना बन सकिया, मेरे केस कतल कर दिते गए क्योंकि मैं मुसलमान हूं, कुवैत दी धरती ते रहिंदा, पर इस वास्ते भाई साहब मैं तुहाडे चरणां विच इक अरदास करदा कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे चरणां विच अरदास करो कि आ जन्म तो बाद मेरा अगला जन्म सिखां दे घर होवे ते मैं सिख बन के गुरु कलगीधर पातशाह दा अमृत छक के पंजा कक्कियां दा धारनी बन के ते सिख हो जावां, फिर मेरा लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। मेरा दिल करदा है कि एक बार अमर छक लव, एक मुसलमान वीर दी भावना है सिख बनन दी, अमर छकन दी। ते अज दा सिख कदे झात मारीए, अज दा सिख नाइयां दी दुकानां ते बैठा है, वो चाहुंदा है कि मैं केस कतल करा लवां, केसां दी विध वी करदा है। अज तकीए मेरियां भैणां वी केसां दी बेद भी कर दियां, मैं उन्हां भैणां नूं भी बेनती करां, उन्हां वीरां नूं भी बेनती करां, आओ भाई जे तुहानूं सिखां दे घर जन्म मिलिया है ते इस विरसे नूं संभाल लईए, आओ भाई पूर्ण हो जाइए। जदों पूर्ण हो जावांगे, दस्तार सजावांगे, गुरु दी सिखी जो गुरु ने बख्शी है इस नूं गहना मन के हंडावांगे ते फिर गुरु बख्शिश करेगा, झोलियां भर देवेगा। आओ फिर अपने मन नूं समझा लईए, ए मंजल दूर बथेरी जो मिलदी ना हर वेरी, हर वारी तां ए मनुष्या जन्म नहीं प्राप्त होना, तैनूं ए दात प्राप्त होईए ते हुण रहितां विच रह, बख्शिश हासिल कर, इस सिखी नूं गहना मन के हंडा। आ जिवें बीबियां गहना पाउंदियां, किस वास्ते अपने शरीर नूं शिंगार दियां, अपने पति नूं खुश करन वास्ते। ते आ भाई सिखा, तेरा भी पति ओ परमात्मा, तू भी उन्हूं खुश कर, अपने शरीर ते आ गहना
ਪੰਜਾ ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈ।